देर जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप।

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: से घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी।
0: और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का सोप रे बेटा, ये लक्ष का सोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का सोप रे बेटा, ये लक्ष का सोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं दे

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: से घूम के आए
1: बम्बई फूलना झांसी
0: और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

झोल है। ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा? कहता हूँ साहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: चुके अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: चुके अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: माँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ ताहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की पीछे अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: चुके अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐजाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐजाने मन की।

माँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: स्वर्ग से भारी वो वीर आत्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेल धन्य है धन्य
0: अमर है।

0: गर्भ से धारी वो वीर आत्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

0: फिर मिल जुलाए हम, फिर मिल जुलाए हम।
1: प्यार भरे गीत गाए, प्यार भरे गीत गाए, खुशियाँ मनाए भाजी, खुशियाँ मनाए हम।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भरी आते हूँ, चंदा की चांदनी हो तारों

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो सारी।

0: की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ, चंदा की चांदनी हो।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।